चारे गावन तुदनो जति सति संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ नरखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे

पीयूसी जाय न जासी। रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना, जो तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाह साहा पत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए। कीमत पाए न कहे आ जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा किता केवड चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सतु सब तप सब चंगियाइया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याइया। तुद बिन सिद्धि किनै न पाईया, कर्म मिलै नाहीं ठाकर हाइया। आखन वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवार नहारा। आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखन औखा साचा नाऊ। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चली है दूख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए। रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ। हर जन के वडभाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मेरे संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिज कागे कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। रहाउ जनन पिता लोक सुत बनिता, कोय न किसकी तरिया। सिर सिर जिक संबाहि ठाकुर, काहे मन भाओ करिया। ऊडे ऊडा वै सह कुसा, तिस पाछे बचरी चरिया। इन कवन खिलावै कवन चुगावै, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जय।

और सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह है, सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सृजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारण हारा, हरे आपे ठाकुर, हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हरे को पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिन का पाओ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू नेचल करता सोई, तुद आपे भाव है सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा, तू कर

किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हव देखा तह डूबी अले।

दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक के पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

रंक भयो राग कही कूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, पुत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर कैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख सुंदरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।

ना ही घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहु, जिस दिया इह वडिआइया कह नानक सुनहु संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारू, वाजी पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत दुवस कीते काल कंटक मारिया,

सत्संग जी, बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बाज को अधिपाच्य दसवीं प्रित श्याम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित करते अमरदास रामदास से वसाय अर्जुन हर गोविंद नु सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण चैत सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दया बैठा है सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पाची के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पार दर दते अंतर के घर सत बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपिया बन चकिया दे चलाई तेग वाहे देख निट की तना प्यारे त्यारे की कमाई दते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लवाइया जरकड़िया चले आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सी किसी देखे संस्था सत्संग कटवाए ते ना नहीं कमाई दाते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारे दाते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है श्रीमद खालसा जी की अरदास है जी श्रीमद खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेताव है जित आवन कासर कासर सुख हो गया जहां जहां गुरु खालसा जी साहब तुम्हारे चरियात देख दे कि फतेह बिद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे मुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की विवाज पंथ सदा से आज दार जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आप जी पंथ को छोड़ लिया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार तो सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसरे ने आसरे गुरु तान तान गुरु गांध उतार जी दोए कर जोड़ करो अरदास उस पावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आपके चैन कामना अरदास आपने बख्शिश की है अब जरा पितृ गुरबाणी सुकून छाल संपूर्ण पाठ दिता है इस वे संध्या समा जान के आपके चरणा सोधदार दहरा साहब पाठ की देने कृपा करो हो या भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हृदय शांति की पालता करो जी अगो तो शुद्ध पितृबाणी टाणी बाल बुद्धि बख्शिश करो इन्हों आज इस खुशी में आप दख्शिया दातों में पितर कराब शादी देगा तैयार करें हाल दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सार संगत की रचना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश देश रखा बख्शिश करो जी की मिलाज कृपा करो दतार जी आप चरणा सेवा कर रहे सारे ढाली सिंह सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करो बख्शो सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भान महिला करो दतार आप जी बख्शिया दातों ने रंगने चुट सवारियां प्रवान कर दी की मिलाज आप दर कर सेवा दार दतार पिता जी बीबी परमिंदर कौर के जन्मदिन के परिवार वालों की मिलाज एक सौ डर आपके चरणा भेटा किता प्रवान करो बख्श कर दे बीबी परमिंदर कौर तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो गुस्सी की नामदार दतार चाड़ी लगने की वार्ता करो जी गुरु जी मिलाज मेहर करो अमृत वेले तो लैके दाते आई सब संगत ने आज दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगत दाते तेरे पर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु जी मिलाज कृपा दतार संगतान खालसा पंथ न एकता स्वाग प्याज बख्शिश करके सत दाज बख्शो चैनल जोड़ो कमल प्यारे तो गलता करो दतार हर मैदान दवान खदर वालता करो जी गुरु जी मिलाज मेहर करो दूर दुराजे घर बैठिया लाइव कट्टा कितने सरण करियां सारी संगत ने हाल प्रवान करो घड़िया ले खिलाओ दतार आपने कृपा की संगत न बख्शे ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਹਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਾਰੀ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵਾਧ ਬਦਤਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਸਮਰਾਧ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਰ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਆਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੁਕਾ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪੇਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਬਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਬਾਰੇ ਅਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ਸਮਰਾਧ ਤਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਰਾਜ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਭੋਜ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ

0: सुनहार सात्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। चक्र चेहन अर बरन जात,

सो हर सदा सरेवियै जिस करत न लागै वार आडाने आकाश करू खिन मह ढाहे उसारण हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार मन मुख अग्गै लेखा मंगी है बहुती होवै मार गुरमुख पत स्यों लेखा निबड़ै बक्से सिफत भंडार उथै हाथ न अपड़ै कूक न सुनिए पुकार उथै सत

आखिर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी नयावै काखी एकै दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उदारू सुखमनी सुखमृत प्रवनाम भगत जिना कै मन विश्राम रहाऊ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागौ पाए प्रभ का सिमरन सबते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माही समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से तनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवानु प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधानु प्रभ को सिमरह से बेमहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन अनंद कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हरनेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबू ना झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बेगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जानु जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन।

शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभु साथ अष्टपदी, जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै, कह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हुवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जिह मार्ग जात केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जप तै पार पराही। अनिक बिघन जय आए सिंगारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबू न तूवै, हर का नाम कूट पाप खूवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइयै साध कै संग। जिह मार्ग के गने जाहे न कूसा, हर का नाम ऊहां संग तूसा।

रे जनकूट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान, मन तन रंग रते रंगी कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाही वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, पोत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बह करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ, नाम तुल कछ अवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। इसलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत विज्ञान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नान गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपीसर थीवे, अग्न वाहे होमत प्राण, कनिक सब है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ भी होमे मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाही, नान गुरमुख नाम जपत गत पाही, मन कामना तीर्थ दे छुट्टै, गर्भ गुमाना मन ते हुट्टै, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तू है बहु देह अनीत, शुद्ध का हो काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत से आनप जम का पव व्यापै, अनिक जितन कर तृष्णा त्रापै, एक अनेक अग्नि बुझै, कूट पाव दरगह नहीं सिजै, छूट सुनाही उपयाल, मुह व्यापै माया जाग, अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिन नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए।

का मन हुई सगल किरीना, हर हर नाम चिन्ह कट कट चीना। मने अपने ते बुरा मिटाना, पिक है सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पापुन नहीं लिपा। निर्धन को धन तेरो नाउ, नितावे कौ नाउ तेरा थाउ। निमाने कौ प्रभ तेरो मानु, सगल कटाकु देवो दानु। करन करावन हार स्वामी, सगल कटाके अंतर जामी। अपनी गत मित जन हो आपे, आपन संगा प्रभ राते। तुमरी उस्त तुम ते हुए, नानक कवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरया। सगल उद्दम है उद्दम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जी घट वसै हर नाम। सलोक निर्गुण यार एयानिया, सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस्ती तरक, नानक निभही नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू सासवार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद। बिरध पयाओ पर साख सैन, मुख पयाओ बैठ को दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै। जे प्रसाद धारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै। जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पव कमुला। जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव कर नित रसना, तिसै त्याग वर संग रचना। ऐसे दोग मूढ़ ब्यापे, नान काढ़ लिहु प्रव्यापे। आदंत जो रखन हार, तिस्यो प्रीत न करै गवार। जाकी सेवा नव निड पावै, तास्यो मूड़ा मन नहलावै। जो ठाकुर सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावै दर गह मान, तिसै विसारै मुग्ध जान। सदा सदैव भूलन हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्या कौडी संग रचै, सा चोट चूट संग मचै। जो चटना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै धोए, गर्द प्रीत भस्म संग होए। अंध कूप में पतत बिकराल, नानक काट लेहु प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर भेखंतर मल माया, छपस नाही कछ करै छुपाया। बार ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसी तरह थाहा। जाके अंतर बसै प्रव्याप, नानक तेजन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह ले हो ओढ़ निभावै। कहाँ बुझारत बुझै डोरा, निष्कही है तू समझै पूरा। कहा विष्ण पद गावै गुंग, जतन करै तौ भी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तू हा उस गवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाय सुआवै न चीत, जो बैराई तासु प्रीत। बलवा के गृह भीतर बसै, अनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मानै मने प्रतीत, काल न आवै मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ द्रोह। याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लिहु अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हुए सुआग्याकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दा

जपति हर हरणीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभु देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जापष्ट प्रदि जब कारु कछ न दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कहु किस व्यापत जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह का किसोभत परम अपन खेला वर्ती जा नान करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहु किस कहु गनी जब एक हरगम पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जो तर है तब कवन निडर कवन कत डरै अपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख अपन आसन तय जन मरण कहो कह विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम कीतास कहो कि सोए जब अविगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आप पिय चर जा नानक अपन रूप आप पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिद्र लगत कौकीस जय जो स्वरूपी जो संसमावै तय किसे भूकवन तृप्तावै करण करावन करने हार नान करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै परवीन तै भेद कतेब कहा कुचीन जब अपन आपा पुर धारै तो सगन अपसगन कहा विचारै जय अपन ऊच अपन आप नीरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक अपनी गत जान हुआ जया छल छेद भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को अपया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कहे के एक भगवंता तय कौन चिंत किस लाग चिंता जय अपन आप आप त्यारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते उचा नानक आपस को अपै पहुंचा जया प्रचु परपंच कारु त्यो गुण में किन्नु विस्तार पापुं तय पही कहावत को नरक को सुर्ग बंचावताल जाल माया जंजाल हो मैं मुख परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेलाप कर दिखे खेल संकुच है तू नानक कह जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुह पाका या पे तनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौत करे आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग जिस भावै तिसे अपना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै।

पूरे के गुण गाओ स्तुपदी, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार गुरु निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आसन त्याग उतरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहु, सा संग गण सागर तरहु, हर तन के परलेहु भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद, नरक निवार उदारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप त्रैलोक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाद वाजय, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजय, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभा मिलाए, मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव, आल जाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभु तारी, नानक निभी खेप हमारी, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधानी कागर ची, सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सोत निदान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त हुए, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कह मत सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ये फल किस जन कै मुख भनी, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मैं ताकी गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कूट अपराध सा संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुट्टै, जाकै मस्तक कर्म प्रपाए, साध सर नानक ते आए, जिस मन बसै सुन लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, तुलब दे तत्काल उधारै, निर्मल सोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि सुमानी, दुख रोग बिन से पै परमु, साध नाम निर्मलता के कर्मु, सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक गुण नाम सुखमनी, सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक हे गुण नाम सुखमनी, सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कह मन विश्राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल किव सचियारा होइयै किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसाण गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को विखै हाद राह दूर कथना कथी न आवे तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया भाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दा तार फिर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निधान गावी है सुनिए मन रखी है पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनाए सद पीर सुरनाथ सुनाए धरत धवल आकाश सुनाए दीप लो पाताल सुनाए पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास सुनाए ईसर ब्रह्मा इंद सुनाए मुख साला हनुमंद सुनाए जोग जुगत तन भेद सुनाए सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास सुनाए सत संतोख ज्ञान सुनाए अठसठ का इशनान सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान सुनाए लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास
सुना है सारा गुणा के गाह सुना है सेख पीर पात सा सुना है अंधे पावे राह सुना है हाथ होवे अस गाह नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछुताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मान कोए मन्ना है सुरत होवे मान बुद्ध मन्ना है सकल भवन की सुध मन्ना है मोहे चोटा ना खाए मन्ना है जम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना है मार्ग ठाक ना पाए मन्ना है पत सिउ प्रगट जाए मन्ना है मग न चले पंथ मन्ना है धर्म से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना है पावे मुख द्वार मन्ना है परवारे साधार मन्ना है तरे तारी गुर सिख मन्ना है नानक पवे ना पेखो ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावा है दरगह मान पंचा सो है दार राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवे सचियार तबले उपर केता पार धरती होर पर होर तिस ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया गुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया किता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे ही उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पाखो खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे हे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे ते ससिर नाहे जेव फुरमाए तेव तेव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावे नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देह पानी धोतै उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर करना लिख लै जाहो
ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਹਾ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੇ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਇਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ, ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ, ਅਸੁਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਤਾ ਲਿਖੀਐ, ਲਿਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ। ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੁਨਾ ਵੀ ਸੁਰਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਾਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਕਿਤੇ ਮੰਗਾ ਹੈ ਜੋਦ ਅਪਾਰ, ਕਿਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟ ਹੈ ਵੇਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੂਹੇ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੈ, ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹੋ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅੱਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਅੱਖ ਹੈ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਅੱਖ ਹੈ ਬਰਮੇ ਅੱਖ ਹੈ ਇੰਦ, ਅੱਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਅੱਖ ਹੈ ਈਸਰ ਅੱਖ ਹੈ ਸਿੱਧ, ਅੱਖ ਹੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਅੱਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਅੱਖ ਹੈ ਦੇਵ, ਅੱਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੋ ਹੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇ ਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖ ਹੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾ ਰਾਗਾ ਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ, ਕਿਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ।
गावहि सर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावहि इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावहि सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावहि वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावहि मोहनिया मनमोहन सुरगामा छुपयाले गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सेई तुद नौ गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता अपना जीव तिस दी वडे आई जो तिस भावै सोई।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹਿ ਸਹਾਣ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵਾ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਆਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਹਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਹਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ ਅਪੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਚੰਜ ਹੈ ਅਮੀਤ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੁਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਪੂਤ ਹੈ ਅਸ਼ੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਬਰੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗ ਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਮ੍ਰਿਦੇ
नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो योग युग वे सुवरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुत हरमे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इस्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्धदा बोधदा बिरदकर्ता अधो उर्द अर्धं अगं ओग हर्ता परं परं परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्त पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात शांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वयंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांत द्वा प्रसाद आदरूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्वको पुन काल यत्र तत्र विराज हि अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश आउर ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र देशा विसा होए फैलो अनुराग नाम काम विहीन पेकत तामहु नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल आखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जा नहीं जिह बेद और कतेव रूप रंग ना जात पात सो जान केहे जेव तात मात ना जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुर तीन लोग चौदह के बिखय जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गडन पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंग हीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्वघंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्वशास्त्र न जा नहीं जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक नेत पाकत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार शांत त्वा प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनाश आजान बाहो शाहान शाह राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान
इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडन भाढ्य चाचरी छंद द्वप्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे कुजंग प्रयात छंद चित्र चक्र करता चित्र चक्र हरता चित्र चक्र दाने चित्र चक्र जाने चित्र चक्र वर्ती चित्र चक्र भरती चित्र चक्र पाले चित्र चक्र काले चित्र चक्र पासे चित्र चक्र वासे चित्र चक्र माने चित्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के अशिज दिशह के अभिज पिशह के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के आदित्य शोक के अवतूत वर्ण के बेभूत कर्ण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण के सर्वा आभरण के जगतंग कृति है के शत्रंग शत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अन पाओ अनूप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफ गुल गुना है के शाह नशा है के कारण कुनिंद है के रोजी दहन दो है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र भौन है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्या है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता है के सर्वत्र गंता है के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फाही में के आकल अला में के साहिब कला में के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशो सलाम है सलीकत मुदा में गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परसत है बिलंदुल मकान जमीन जमान तमीजुल तमाम रजू अल निधान हरीफ अल अजीम रजाइक यकीन अनेक उतरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनी मुल्क राज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त बेपहूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुदा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबादे अगंजे अगादे शुभं सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप है अचेज है अच्युत है किनर्कं प्रणाश है पृथ्वीवल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है बेपोगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है बेपोगत प्रभा है अनोकत स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है युवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंत है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है चरपट शांत अप्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांतत्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेभूते प्रमासं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेभूते अनंगी अनामेत्र भंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुसलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी दहेंद हैं के राजक रहेंद हैं क्रीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकान हैं हरासुल फिकान हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहेब किरा हैं कि नरकं प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के सर्बुल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परम ईश हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीन जमा है अमी कुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलं प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलं अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार शंतु प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर आगंजो हर नर प्रपांजो अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशे जो अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनास कृत तर तुरास अजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चेत चरण नाम अनशे जुगात आजिज न बात अनचा जुगात अनरंज बात आन टोट भंडार अन ठट अपार आठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तुआ प्रसाद करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्ब्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खाल खंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संगताम संगसात रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी शांत
अजय अलय अभय अभय अबू अजु अनाश अकाश गंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अभा अठा अनाथे प्रमाथे अजो नियमोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं बेभूते सदा सच्चिदानंद सत्रं प्रणासी क्रीमलकुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवीं तुआ प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे ओ मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिना एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारी ऊट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारी भारी पूजान के भूप पहली बेद न्यावत सीसना जात बिचारे इते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नागे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान कपेख है पौन आहार जति जत तार सबै सुब चार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मले

सची पत अंत फसे जम फास करेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दू लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो नाहत फ्रियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पिशा कौ सीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पश को मेरे तान कौ पूजन तहायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान कौ पूजत है पश को मेरे तान कौ पूजन तहायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दय मुझे उबरे है मरण काल का त्रास निवरिया जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो कर हो रक्षा राख ले हो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दोष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सैव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देवदायत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घाट घाट के पट पट की जान जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपने बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीने ओत पूज खान बहुर राच दीने कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो राण काता जे अस तुज ताव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे
जो कल को एक बार त्याय।

ताके काल निकट न है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि नहर हो, ताके ताप तनक मुहरे हो, रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह शवाय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप हे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई, अड़िलो सुने गुंग जो जाहे सो रसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भाओ निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै, चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस फुन तीन कहि जय, भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते, को आंख तरे नहीं आनेओ, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मानेओ, सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जानेओ, श्री अस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तोहे बखानेओ, दोहरा

साहिब जी अमय दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुरु नाव नित दरियाओ जन्म हम काल खतोवे सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए

0: तू सच्चा सास सुवालियो जिनकी तीस पार पया तो नानक करते बता जो किछ करना कर हमारा दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर

मैं असर की किस्म मेरा सबो दुख गवाए जियो विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया

अमर अजूनी जात न जाला, अगमे गोचर रूप न रेखिया, खोजत खोजत घट घट देखिया, जो देख दिखावै तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जप जापौ बिन जगदीसै, गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाओ, दूजे भाई लगे पछताणी, जमदर बाधे आवण जाने, क्या ले आवह क्या ले जाहे, सिर जमकाल से छोटा खाहे, बिन गुर शब्द न छूट सकोए, पाखंड की न मुक्त न होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन कौथाओ, रात दिनंत किए पाओ पाओ, जिन किए कर वेखन हारा, अवर न दूजा सिर जनहारा।

ताक न पाए। अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साध है, सच नि केवल कर्म अराध है। पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ। तिस मह मनुआ

को विका फलोहार किए फल जाए रस कस खाए साध गवाए कूड़ै लालच लपटै लपटाए छूटै गुरमुख साच कमाए द्वादश मुद्रा मन अवधूता अहनिस जागै कब है ना सूता जागत जाग रह लिव लाए गुर परचै तिस काल न खाए अतीत भय मारे बैराई प्रणवत नानक तह लिव लाई द्वादशी दया दान कर जाने बाहर जातो भीतर आने बरती बरत रह निकाम अजपा जाप जपै मुख नाम तीन भवन मह को जाने सब सुच संयम साच पछाने तीरस तरवर समुद्र किनारे अमृत मूल शिखर लिवतारे डर डर मरे न बूढ़े कोए नि डर गूढ़ मरे पत कोए डर मह घर घर मह डर जाने तख्त निवास सच मन भाणे चौदस चौथे ठावे लह पावे चौदस चौथे ठावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह घर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पाताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिव लाए अमावस्या चंद गुप्त गै नार बुझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन ज्योत तिह लोई कर कर वेखै करता सोई गुर ते दिसै सो तिस ही माहे मन मुख भूले आवह जाहे घर दर ताप तिरथान सुहावै आप पछाणै जा सतगुरु पावै।

करे सो होई। नाम रत्ते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझ है कोई। हृदय जपनी जपो गुण तासा, हर अगम गोचर परम पर स्वामी। जन पग लग त्यावो हुए दासन दासा रहा। सोमवार सच रहा समाए, तिसकी कीमत कही न जाए। आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए। अगम गोचर लखिया न जाए, गुर कै शब्द हर रहा समाए। मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर धंधै लाया। आप बुझाए सोई बुझै, गुर कै शब्द दर घर सूझै। प्रेम भगत करे लिवलाए, हौमै ममता शब्द जलाए। बुधवार आपे बुधसार, गुरमुख करनी शब्द विचार। नाम रत्ते मन निर्मल होए, हर गुण गावै हौमै मल कोई।

देवनहार। जो देवै तिसको बल जाइय, गुर प्रसादी आप गवाइय, नानक नाम रखो उरतार, देवनहारे कौ जयकार। वीरवार वीर भरम भुलाए, प्रेत भूत सब दूजै लाए, आप उपाय कर वेखै विकाओ सबना।

आप उपाए सब कीमत पाई, गुरमुख होवै सो करै विचार, सच संजम करनी है कार,

वार वार दिन सरैन तिवै संसारू आवा गौण किया करतारू निचल साच रहया कलतारू नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचारू बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे श्रेष्ठ साजी जी जंत माया मोह पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सोजी पाए परपंच चुकै सच समाए जाकै मस्तक लिखिया लेख ताकै मन वसिया प्रवेक रहाओ श्रेष्ठ उपाए आपे सब वेखै कोई न मिटै तेरे लिखै सिद्ध

एक न चित्त है दूजे लुबहारी, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय पावन हार, आपे की तोन गुर विचार, बहुते भेख कर है भेख धारी, भाव भाव भरम है काची सारी, ऐथे सुख न आगे हुए, मन मुख बुए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे भरम चुकाए, घर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सोए, ये थित्ती वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंध गुवार, थित्ती वार सेवह मुग्ध गवार, नानक गुरमुख बूझ है सोजी पाए, इकत नाम सदा रहा समाए। बिलावल महला पहला छंत दखनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंदन वेलड़िया गोयल आई राम, मटकी डार धरी हर लिव लाई राम, लिव लाए हर सो रही गोयल, सहज

राम अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख बूझे ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभवन सोझी सूझे रह अतीत।

राम मेरे हर प्रभ भावै सो करै हर रंग हर जापै राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापै राम मानस जन्म हर पाइयै हर रावण वीरा राम गुरमुख मिल सुहागणी रंग हुए कनेरा राम जिन मानस जन्म न पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभु नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम

सफल जन्म हर पाया। नानक प्रभ की नाराम बिलावल महला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन

मोहे लड़ लाया। भया सुमाहड़ा रतन विसाहा राम, खोजी खोज लद्दा हर संतन।

बिनवंत नानक सब संत मेली, प्रभ करण कारण जुगो। भवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम, प्रभ

आनंद अनदिन वजह वाजी दिन सरैन उमाहा तहरोग सोग न दुख ब्यापै जन्म मरण न ताहा रिद सिद्ध सुधार समृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सके।

निर्मलाया दृष्टधारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले।

बिनवंत नानक सी जान है जिनी हर रस पिया। बिलावल महला पंजवां चंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

मुखो चतुराई मोहे नाहे रिझावो कह मुखो नह चतुर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप न नैन बंके जह पावे तह रख तू ही।

राम सो प्रभु सद ही सेवी है पाई है फल मंगे राम नानक प्रभु शरणागति जप अंत तिरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ कीन्ती ना राम वडभागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम बाह पकड़ तम ते काढ़िया करे अपना लीना राम नाम

राम रस पिनेड़े अपने राम संगे सेलो एन निके राम प्रभ पेकत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिख्या रस फीके राम नानक जल जल है सुमाया ज्योति ज्योत मीके राम अमृत।

गति और सो गति जल जो गति बहुपात पचा सत्वर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चला आप जिन्हें शरण किती हम जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रभ के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रभ की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महानुप्रभ के चन्नां नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल अतीत होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई फलां चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण करिए सत्कार योग ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हों पासो अज दे जिहड़े हन चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण करिए गुरु इतिहासिक इतिहास सरुण करिए दस वालों फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र मुकदस तिन्नगी गोद अनंत आनंद माने गुरु प्रसाद संगत जी सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है। अज संध्या वेले दे इन्हां विशेष गुरमत समागमां विच आप जी दी गुरबाणी कीर्तन राही सेवा करन दा सुभाग अते आप जी दे दर्शन करन दा सतगुरु जी ने एक अवसर बख्शिश कीता है। बाणी दा कथन है, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। यह कीर्तन दी महानता, यह कीर्तन दी वड्याई। जिहड़े सचमुच अंदरों गुरु शब्द दे नाल जुड़ के गुरु नानक दे उस महान बख्शिश कीते कीर्तन दा आनंद माणदे हन, वो कीर्तन जिहड़ा तुसीं रोज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब जी तो दूर बैठे सरवण करते हो। मैं ये हर थां बेनती करदा कि भावे गुरु रामदास जी नूं प्यार करन वाला, उस दर नूं प्यार करन वाला शरीरक तौर ते हजारां किलोमीटर दूर बैठा होवे, पर जदों उस दर दे दर्शन हुंदे हन, उत्थों प्रसारित हुंदे कीर्तन दी धुनी कन्नां विच पैंदी है, ते उस लई इउं नहीं लगता कि असी दूर बैठे कीर्तन सुन रहे हैं। उस लई इउं लगता है कि धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री दरबार साहब विखे बैठे हुए हैं। यह बख्शिश है उस दर की, उस घर की। डिठे सबे थाव नहीं तुत जिहया, बदो पुरख बिदाते तातु सोहया, वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर, हर हा नानक कसमल जाए नाये रामदास। तन तन रामदास गुर जिन सिर आतरे सवारे। आओ सारे ने रल के कीर्तन करना है। जिथे तुसी कन्ना दे नाल बाणी नूं सरवण करना है, उथे नाल कोशिश करनी है साडी रचना दी भी हाजरी लगे, साडी रचना भी निर्मल ते सुची होई गुरु दे शब्द नाल, उस वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल। इसलिए सारे रल के आपां कीर्तन करिए। अगला शब्द आप जी सरवण करोगे, मेरा वैद गुरु गोबिंद हर हर नाम अवखद मुख देवे काटे जम की फंद। करो कृपा सारी।

आओ गुरु प्यारे साथियों जी, अज दे पावन पवित्र दिहाड़ा होला महला अते वैसाखी दा पूर्व ए दीवान इन्हां खुशियां दे विच सजे हन। संगता बड़ी दूर दूर चल के गुरु दरबार दे विच पहुंच रही हैं। पहला शब्द आप जी ने सरवण किया, आओ जी तू आओ हमारे हर जस सरवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तनहरिया हर जस तुम संगावना। फिर गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभ्य काज सवा, ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा लेके पहुंच रही हैं संगता। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सोख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमार। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। साडा आउण दा समा सफल हो जाए जी सतगुरां दे चरणां नाल जुड़ के ए श्रद्धा दी भावना दे नाल कि मालका तेरी सरण दे विच आए हाँ। कृपा करी मेहर प्रिया हथ रखी, आउण वाले समय दे विच संगता दे सारे कारज आप जी ने संवारने हैं। सो आओ गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभ्य।

सन्मान योग सत्संगी जनों, मैं जिन्हें शब्दों का कीर्तन कर रहा हाँ, ये शब्द आप संगत विचों ही संगत वालों कुछ बच्चों ने मैं हुक्म किया, मैं शब्दों का गायन करके सुनावा जी। सतगुरु बख्शिश करे, जो गाव्या सुनिया है इसकी विचार साढ़े हिरदे बस। तो एक शब्द की हाजिरी होर मैं आप जी के नाल मिलकर लगावांगा जी। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, इस शब्द का मैं हुक्म होया सी कि बच्ची वालों। तो पिछले दो दिन तो तीन दिन तो दस रहे आप संगत की सेवा में हाजिर हैं। अज का ही इस फेरी का सतगुरां दे इस मुबारक दरबार के अंदर आखिरी प्रोग्राम है। जदों जदों भी मालिक की बख्शिश होवे मैं हाजिर हुंदा हाँ। प्रबंधक वीर का मैं हिरदे दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा हाँ। वीर नरेंद्रपाल सिंह जी ते उन्हां दे समूह जिन्ने भी साथी हैं, मेरे अति सत्कारयोग एन जी डॉक्टर पाठिया, कमलजीत कौर पाठिया, जिन्हां दे सहयोग नाल आप संगत दी सेवा का सपाट प्राप्त हुंदा है। आप जी बहुत प्यार देंदे हो, बहुत माण देंदे हो। मैं थोड़े प्यार का सारिया का माण का मैं ऋणी हाँ, मैं थोड़ा कर्जदार हाँ। जिमें जिमें समा मिलता रहेगा मैं आप संगत की सेवा च हाजिर होवा। तो जिमें कि आप जी ने दस्या है, कल दीआं खबरां विच भी आप जी ने पता लग रहा है कि जो कोरोना वायरस है इसका एक होर रूप बदल के आया है, जिस तों आपां सुचेत रहना है। अपना भी ध्यान रखियो, दूसरों का भी ध्यान रखियो। डरना भी नहीं, पर बेपरवाह भी नहीं, लापरवाह भी नहीं होना। करते तो भरोसा रखना, वो रखिया करे। घर बार तेरा प्रवासा, तू जन के है संघ। पर सुचेत जरूर रहना है, अपनी सेहतां का ध्यान रखियो। जरूरत अनुसार ही बाहर निकलियो, नहीं तो घरे रहो, बच्चों के रहो, बच्चों के नाल कोई गुरमत दियां गल्लां करो, कोई गुरु दियां गल्लां करो, कोई चंगियां गल्लां करो, कोई चंगियां बच्चों नूं गल्लां सिखाओ। तो पिछले समय तो सारा संसार संताप भोग रहा है, मालिक की कृपा है वो जाने, पर आपां सुचेत रहना है। और जिन्होंने वैक्सीन लवा ली है ठीक है, जो नहीं है तो लवा लो, दवाई असर तो कर दी है। तो मैं तो भाई साहब कल दे लवा के आया, मैं बूस्टर लवाया होया, इन्होंने सैकंड डोज लवाई हुई, बुखार सानू दोनों चढ़िया होया। पर जो मैं अक्सर मैं बेनती करता रहिंदा हाँ, कीर्तन बंदगी है। गुरु नानक साहब ने कोई होर कर्म नहीं किया परमात्मा की बंदगी वास्ते, ना घर छड़ के जंगलों च गए, ना भुखे रहे, किसी तरह का कोई कर्म कांड नहीं किया, सिर्फ तो सिर्फ कीर्तन किया। सो कीर्तन नूं ध्यान रखना, आपां कन रस नहीं बनाउणा, इबादत है, बंदगी का तरीका सानूं सतगुरां ने बख्शिया है। तो जो बंदगी करते होइए तो मालिक की मेहरामत हुंदी है, जे वह सतगुरु एकाग्रता बख्श देवे तो ध्यान रखना इस गल का, उसकी कृपा तो बिना एकाग्रता भी नहीं होंगी। जे एकाग्रता बन जाए तो फिर दुख सुख भी भुल जाते हैं। तो तुहाडियां संगतां दीआं असीसां दा सदका आप संगत की सेवा की है। एक शब्द का होर गायन करके फिर समाप्ति होगी। अगला जो भी प्रोग्राम है वह आप जी ने प्रबंधक वीर दस देंगे। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, ये बच्चों ने मैंने हुक्म किया, मैं किसी वे ने कहा हों तो फिर भाव मैं, क्योंकि मैं कई बार लगता है कि मैं उन्होंने शब्दों का ही कीर्तन कर रहा जोड़े थोड़े दिन पहला सुनाए से पहला भी सुनाए। पर कई बार मेरे न एक इस तरह की घटना हुई, मैं मिसी सागा टोरंटो कीर्तन कर रहा सी। एक बच्चा बार बार एक शब्द वास्ते कह रहा है, मैं पता नहीं शब्द विसरिया होया सी, मैं ध्यान नहीं दिता, मैं शब्द का गायन ना किया। तो समाप्ति हो गई, अनंत साहब भी जाप हो गया,
ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹਨ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।

सन्मानयोग सत्संगी जनों, पिछले दिनों तो ही सिख जगत गुरु नानक पातशाह जी का आगमन पुरब, प्रकाश पुरब या अवतार पुरब भी पाकते हैं। सतगुरों का वो दिन जिस दिन साहिब इस संसार विच प्रगट हुए, प्रगट दिहाड़ा वो मनाया जा रहा है। सतगुरु बख्शिश करे, सतगुरों के बख्शे हुए उपदेश साडे हिरदे वसन जी, असी गुरु की गल नूं समझ के सच्चा जीवन जात सकीए जी। तो आप संगतां दा धन्नवाद है। मैनूं लगदा सी कि अज संगत नहीं आएगी क्योंकि अज अमेरिका की धरती से उन्हों का अपना खास दिन है, छुट्टी का दिन है। पर आप जी जितने भी आए हो जी आयां नूं आप जी का धन्नवाद है। कल फिर इस समय मिल बैठांगे, जो गुरु कराएगा मिलजुल के साहिब की कीर्ति करांगे जी। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ।